0: Sound check. Surya FM studio time.
1: It's 7 AM. Bihan ko 7 baje.
2: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुण्ड नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु
1: नेपाल विद्युत प्राधिकरण सोलु खुम्बु वितरण केन्द्र

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: सांचे सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 8 AM बिहान को 8 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

0: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टुडियो टाइम
2: 10 AM बिहानको 10 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुपुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू।

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: सांचे सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: स्नैपिंग एम बिहान को 11 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

69 र 98 61 23 14 72 अंजी औषधालय सोलो दूत कुंड नगरपालिका पास कलेरी सोलो खुम्बु पास नंबर ओडा कार्यालय केही अगाडी।

संस्कार और संस्कृति के वो मान्यता सबने बिर्सिसके आजकल आफ्नो त यी युनिटी कार्पेटले हो विगत तीन दशकदेखिको सुदूर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनुहोला यति कार्पेट कार्पेटको शहनशाह

किया खाता नानी भंसा तारा हूँ न दिन न तिमला सच भरी मुस्कुराहट न दिन न तिमला सच भरी

0: Sign check. Suru FM is studio time.
1: It's 7 p.m. Saatko saat baje.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा बड़ा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।